याद रखा था, लिया ना आएगे इतनी सामाई बाला नहो किया ना दे कव दावा तादरे नी सामान जीवित है ना तिकर गाने ना ने एत याद है मालना के नेता याद दीपु आदरे मां कव दावत वैने की नेक्टे देन नेत में ए मत के आने का मगे अवसान उसमे दिखे आने का मां जीवत वे आदरित हरिपुदमा.